अलग अंदाज से। उलमा के साथ ताल्लुक कायम करना, उनसे इल्म हासिल करना, उनसे इस्तिफादा हासिल करना, उनसे मशवरा लेना, उनके इल्म आदाब और अखलाक सीखना उनसे, और लोगों को उलमा से जोड़ना, ये मनहजुस सलफ है। जो इसके मुखालिफ है, इसके बरअक्स है कि उलमा को तर्क कर देना और लोगों को भी उलमा से दूर करना, ये मनहजुस सलफ में से नहीं है। इरशाद बारी ताला है, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून इला आखिर आया। सवाल करो अहले ज़िक्र यानी अहले इल्म से, अहले कुरान, अहले तौहीद, अहले सुन्नत से, जो अहले इल्म, उनसे सवाल करो। इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बड़ा प्यार और आसान रास्ता बयान फरमाया है। अहले इल्म से जाके सवाल कर लेना, अहले इल्म से जुड़ जाना, अहले इल्म के कदर जानना, उनका एहतराम करना, उनकी तआज़ीम करना, शुरू शरीयत के हदूद के अंदर रहकर और उनके इल्म से इस्तिफादा हासिल करना, उनके अखलाक से इस्तिफादा हासिल करना। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर सईदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत के उमूम में अहले इल्म की मदह है, तारीफ है, और सबसे बुलंद इल्म के अक्साम में से अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ताला की किताब का इल्म है, कुरान मजीद का इल्म है, और अल्लाह ताला ने उन लोगों को हुक्म दिया है जो नहीं जानते उनकी तरफ रुजू करें, जो जानते अहले इल्म की तरफ रुजू करें। जो भी नई चीज़ें हवादिस आती हैं दुनिया में, अगर वो नहीं जानते तो सवाल करें अहले इल्म से। और इसके ज़मीन में अहले इल्म की तअदील भी है और उनका तज़किया भी है अहले इल्म का, क्योंकि हुक्म दिया गया है कि उनसे सवाल किया जाए, और इससे जो जाहिल है वो खारिज हो जाता है, कि जाहिल जो है उसकी मजम्मत, अहले जाहिल की मजम्मत की जा रही है। और इससे ये सबूत भी मिलता है कि बेशक अल्लाह ताला ने इन उलमा को अमीन बनाया है अपने वही पर और अपने तंजील पर, अमानतदार लोग हैं, और उनको हुक्म दिया है कि अपने नफ्स का तज़किया करें, नफ्स को पाक करें। इन उलमा को हुक्म दिया है और सिफातुल कमाल से मुत्तसिफ हो जाएं, ये अल्लामा सईदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं। इमाम अय्यूब अस-सुख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कम सिन लड़के की सआदत इसी में है और अजमी की भी सआदत इसी में है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे दे, अहले सुन्नत जमात के आलिम से जोड़ दे। अल्लाह ताला को तौफीक दे दे कि अहले सुन्नत जमात के किसी आलिम से जुड़ जाएं। इमाम अय्यूब अस-सुख्तियानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इन मिन सआदत अल-हदथ वल-अअजमी, कि बेशक एक कम सिन, अल-हदथ कम सिन और अअजमी की सआदत इसी में है कि अल्लाह ताला يوفقهما الله لعالم من اهل السنه, कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि जुड़ जाए अहले सुन्नत जमात के किसी आलिम से। وقال عبد الله بن شوذب, मैं عبد الله بن شوذب فرماتے ان من نعمه الله على الشاب, कि बेशक अल्लाह ताला की किसी जवान पर नेमत में से नेमत यह है, اذا تنسك جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے کر لے, ان يواخي صاحب سنه يحمله عليها, कि साहिब सुन्नत आलिम से के साथ मिल जाए जो उसे सुन्नत की तरफ बुलाता रहे, सुन्नत से जोड़ दे। وقال عمرو بن قيس, عمرو بن قيس فرماتے ہیں اذا رايت الشاب اول ما ينشأ مع اهل السنه والجماعه, जब आप किसी जवान को देखते हो कि उसकी तरबियत अहले सुन्नत जमात के उलमा के साथ होती है, فرجه, तो फिर अच्छी उम्मीद रखो इससे। واذا رايته مع اهل البدع फ़ैस मिन हो, अगर उसे आप देखते हो अहले बिदअत के साथ उठता बैठता है, उन्हीं के साथ रहता है, तो फिर उससे मायूस हो जाओ। फ़ैन शाब अला अव्वल नुशूइही